शोभा जोशी ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना समूह स्वर में सुनते हैं, जिसके रचयिता हैं गजानन कुलकर्णी, संगीतकार हैं रविंद्र खासनेस।

गजानन कुलकर्णी ने रची यह भक्ति रचना समूह स्वर में अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार थे रविंद्र खासनेस। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं प्रभाकर कारेकर के स्वर में ये भक्ति रचना।

प्रभाकर कार्यकर ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंडित जगदीश प्रसाद का ख्याल गायन राग अहीर भैरव. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रघुनाथ नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सोहनलाल शर्मा. राग अहीर भैरव में ख्याल, कलाकार पंडित जगदीश प्रसाद.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट आ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन. Listen to a khayal in Raag Ahir Bhairab. Our artist this morning, Pandit Jagdish Prasad. Accompanying on the tabla, Raghunath Nandi, and on the harmonium, Sohan Lal Sharma. Now, listen to a khayal in Raag Ahir Bhairab. Our artist, Pandit Jagdish Prasad.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित जगदीश प्रसाद। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे रघुनाथ नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सोहन लाल शर्मा। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए सुनते हैं पंडित संदीपन समाजपति का ख्याल गायन राग बैरागी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं हिरणमय मित्रा। राग बैरागी में ख्याल, कलाकार पंडित संदीपन समाजपति।
1: You are listening to Khayal in Raag Ahir Bhairab. Our artist, Pandit Jagdish Prasad. Accompanying on the tabla, Raghunath Nandi, and on the harmonium, Sohan Lal Sharma. This is Raagam, 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a Khayal in Raag Bairagi. Our artist, Pandit Sandipan Samajpati. Accompanying on the tabla, Devashish Sarkar. And on the harmonium, Hiranmoy Mitra. Now, listen to a khayal in Raag Bairagi by Pandit Sandipan Samajpati.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बैरागी में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित संदीपन समाजपति। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे हिरणमोय मित्रा। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू ख्याल इन राग बैरागी बाय पंडित संदीपन समाजपति, एकम्पानिंग ऑन द तबला देवाशीष सरकार एंड ऑन द हारमोनियम हिरणमोय मित्र। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन।

कलाकार है वीणा मुरडूर। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग विभास सुनते हैं। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है ए हो नरहर नारायण, और द्रुत एकताल में निबद्ध रचना के बोल है छांडो कृष्ण जुगल बैया। सात संगत तबला सचिन राजोपाध्ये, हारमोनियम उपेन्द्र सहस्रबुद्धे।

थे वीणा मुरडुर द्वारा प्रस्तुत राग बिभास। आपके साथ तबले पर थे सचिन राजोपाध्य, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं वीणा मुरडुर द्वारा प्रस्तुत राग भीम पलास। विलंबित छपताल में निबद्ध रचना के बोल है सो ही रसना जोगी, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है वीरज में धूम मचायो श्याम। आपके साथ तबले पर है सचिन राजोपाध्य, हारमोनियम पर है उपेंद्र सहस्रबुद्धे।

थे वीणा मुरडू द्वारा प्रस्तुत राग भीम पलास। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे सचिन राजोपाध्य। हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मानिक वर्मा का गाया राग बागेश्री.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Vidushi Manik Varma. She first presents Rag Bageshri.

0: अभी आप मानिक वर्मा का गाया राग बागेश्री सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए इनकी गाई काफी ठुमरी।
1: यू वर लिसनिंग टू राग बागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी मानिक वर्मा। शी कंक्लूड्स हर वोकल रिसाइटल विद अ ठुमरी इन राग काफी।

0: अभी आप मानिक वर्मा की गायी काफी ठुमरी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद दैट ठुमरी इन राग काफी वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय विदुषी मानिक वर्मा। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर आज के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन, प्रारंभ में राग बहार।

अभी आपने उस्ताद बिस्मिल्ला खा का शहनाई वादन सुना, राग था बहार। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खा ने शहनाई पर बजाया राग मालकौंस।

अभी अपने उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने शहनाई पर बजाया राग मालकम सुना। रागम 24/7 DTH के लिए ये आकाशवाणी पुणे की निर्मिति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग यमन पर सितार वादन. कलाकार हैं स्वरूप कुमार बोस. आपके साथ तबले पर हैं पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर हैं सोमनाथ बर्धान. तो लीजिए प्रस्तुत है राग यमन पर सितार वादन. कलाकार हैं स्वरूप कुमार बोस.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. लिसन फर्स्ट टू अ सितार रिसाइटल इन द राग यमन. आवर आर्टिस्ट इज स्वरूप कुमार बोस. Accompanying our artist on the tabla is Pinaki Chakraborty, and on the harmonium is Somnath Bardhan. Listen now to the sitar in the rag Yaman. Our artist, Swarup Kumar Bose.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग यमन पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे स्वरूप कुमार बोस। आपके साथ तबले पर थे पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर थे सोमनाथ बर्धान। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम मिश्र पीलू ठुमरी, तदुपरांत जिला दादरा। कलाकार हैं पत्रलेखा दत्ता राय। आपके साथ तबले पर हैं तुषार दत्त और हारमोनियम पर हैं देवाशीष अधिकारी। तो लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम मिश्र पीलू ठुमरी, तदुपरांत जिला दादरा। कलाकार हैं पत्रलेखा दत्त राय।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Yaman. Our artist was Swarup Kumar Bose. Accompanying our artist on the tabla was Pinaki Chakraborty and on the harmonium was Somnath Bardhan. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a vocal recital. Listen to Mishra Pilu Thumri followed by Zila Dadra. Our artist is Potrolekha Dottoroy. Accompanying our artist on the tabla is Tushar Datta and on the harmonium is Debashish Odhikari. Listen now to Mishra Pilu Thumri followed by Zila Dadra. Our artist Potrolekha Dottoroy.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम मिश्र पीलू ठुमरी, उसके उपरांत जिला दादरा सुन रहे थे। कलाकार थे पत्रलेखा दत्तो राय। आपके साथ तबले पर थे तुषार दत्तो और हारमोनियम पर थे देवाशीष अधिकारी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू मिश्र पीलू ठुमरी फॉलोड बाय जिला दादरा। आवर आर्टिस्ट वॉज पत्रलेखा दत्तो राय। Accompanying our artist on the tabla was Tushar Datta and on the harmonium was Debashish Adhikari. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata, Moragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music.

दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की हैं। रितम सरकार अखिल भारतीय संगीत समारोहों के साथ साथ बंगाल के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेती रहती हैं। आप एक ऐसे गिटार वादक हैं जिन्होंने संगीत के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों के अलावा संगीत की कार्यशालाओं में भाग लेने और

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप ऋतम शर्कर से राग मालकौंस सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग मेघ। आलाप से इसकी शुरुआत होगी और गत में इसकी बंदिश रूपक ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Malkos in the guitar recital by Ritam Sarkar. Continuing with the recital, he now presents Rag Megh. It begins with an alap and the composition is set to gat in rupak tal.

0: आप रितम सरकार से राग मेघ सुन रहे थे। गिटार वादन की इस प्रस्तुति का समापन अब राग किरवानी के साथ करेंगे। यह बंदिश कहरवा दाल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग मेघ। रितम सरकार कंक्लूड्स हिज गिटार रिसाइटल इन राग किरवानी। द कंपोजिशन इज सेट टू कहरवा दाल।

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप रितम शौरकार से राग किरवानी सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे औशित जाना। और इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यहीं संपन्न होती है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग किरवानी इन द गिटार रिसाइटल बाय रितम सरकार। ही वॉज अकॉम्पनीड ऑन द तबला बाय औशित जाना। And with this, we come to the end of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

आप सुन रहे हैं ख्याल युगल गायन। कलाकार हैं पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल डियो रिसाइटल बाय पंडित राजन मिश्र एंड पंडित साजन मिश्र। ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग बिलास खानी तोड़ी। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं बरनी ना जाए। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बंदिश के बोल हैं पिया को मनाऊं मानत नाही रे। नाउ द आर्टिस्ट पंडित राजन मिश्र एंड पंडित साजन मिश्र रेंडर राग बिलास खानी तोड़ी।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल युगल गायन। कलाकार थे पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र। संगत कलाकार थे तबले पर मुकुंद भाले और हारमोनियम पर मोहन मूंगरे। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल ड्यूओ रिसाइटल बाय पंडित राजन मिश्र एंड पंडित साजन मिश्र। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय मुकुंद भाले ऑन द तबला एंड मोहन मूंगरे ऑन द हारमोनियम। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विनोद कुमार द्विवेदी का ध्रुपद गायन. सर्वप्रथम प्रस्तुत है विनोद कुमार द्विवेदी का गाया राग भटियार में ध्रुपद. पखावज पर संगत कर रहे हैं पंडित राजकुमार झा.

अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार द्विवेदी का गाया राग भटियार में ध्रुपद। अब प्रस्तुत है इन्हीं का गाया राग दरबारी में ध्रुपद। पखावज पर संगत कर रहे हैं पंडित राजकुमार झा।

अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार द्विवेदी का गाया राग दरबारी में ध्रुपद। विनोद कुमार द्विवेदी अपने कार्यक्रम का समापन राग किरवानी में गाए ध्रुपद से कर रहे हैं। पखावज पर संगत कर रहे हैं पंडित राजकुमार झा।

अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार द्विवेदी का गाया राग किरवानी में ध्रुपद। पखावज पर संगत कर रहे थे पंडित राजकुमार झा। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सहयोग से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी. विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनी बद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है सुखमय बैनर्जी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio Delhi. We now present for you a sarod recital by Swapnamay Banerjee. Accompaniment on the tabla is provided by Sukhmay Banerjee. Listen to Rag Basant Mukhari, in which you will hear the alap followed by the vilambit and drutgat set to Teen Taal.

0: अभी आप स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी सुखमय बैनर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: दैट वॉज राग बसंत मुखारी एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय स्वप्नमय बैनर्जी। Accompaniment on the tabla was provided by Sukhmay Banerjee. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का DTH चैनल रागम. आइए सुने भक्ति संगीत. हर रूप में छिपे हैं. आइए अब सुने RP शुक्ला की रचना विवेक प्रकाश की आवाज में.